0: घर पे बहुत बोर हो रही
1: हूँ,
0: कहीं चले?
1: कहाँ?
0: कश्मीर?
1: इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग्स हैं। अगले महीने?

0: मामी।
1: ये आयशा सिगरेट पीती है।
0: मुझे पता है माँ। अरे वो कभी कभार ऐसे ही।
1: पता है तुझे? तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए। ये इस घर में नहीं चलेगा।
0: अरे तो माँ लिखती है अंदर, दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना। ऐसा करता हूँ, मैं बोलता हूँ।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064426 70, मोबाइल नम्बर 98460656238।